मोर चायो नंगे आमन जामणिया। फिर साधु सरणी पड़िगे चरणी अब टूटस मोजो कीती है। ओ नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे। मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे मन लाले दीजे भोग करीजे। हाँ खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया। अत मिलो मित्र चिराने गुरथिया साखी ता डिठम आखी। फिर जे अवर ना दिसे को नानक संत दयाल मोहन के मन हर चरण गहीजे। ऐसी मन प्रीत कीजे आसा महला पंजवा सलोक। बन में फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे। नानक पेटे साध जाप हर पाया मन माहे। शंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे। ब्रह्मे कोड आराध्य ज्ञानी जाप जपे। जब ताल संजम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना। कर गमन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बनते न पशु पंखी सगल तुझे आराधते। दयाल लाल गोविंद नानक मिल सा संगत होए गते। कोट बिशन अवतार शंकर जटा धार। क्या है तुझे दयार मन त रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूर्क प्रथनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे यख किन्नर गुण पणी। कोड इंदर अनेक देव जप्त स्वामी जय जयकार। अराध नाथ दयाल नानक साल संगत मिल उधार। कोड देवी जा को सेव लक्ष्मी अनक पात। गोवत प्रगट जा को आराध्य पौन पानी दिन सरात। नखेत्र ससियर सूर त्यावे बद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतर बेत खड़ शास्त्र जा को जपात। पद पावन भगत वचल नानक मिलिगे संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत पनी। अनजानत जो सेव एती न जाए गनी। अवगत अगंत अथा ठाकुर सगल मंजे बहारा। सर्व जाजक एक दाता न दूर संगी जारा। बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी। यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरणी। आसा महला पंजवा सलोक। उदम करो वडभागी हो सिमरो हर हर राए। नानक जे सिमरत सब सुख होवे। दुख दर्द प्रम जाए शंत। नाम जपत गोविंद न अलसाइए। पेट साधु संग जमपुर न जाइए। दुख दर्द ना पौ व्यापे नाम सिमरत ससुखी। सास सास आराध हर हर त्याए सो प्राभ मान मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया से वालाइए। नाक पयंपे चरण जंपे नाम जपत गोविंद न अलसाइए। पामन पत पुनीत नाम निरंजना। परम अंधेर विनाश ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल मही यल पूरिया। एक निमख जाके हृदय बसया मिटे तसे वसूरिया। अगाध बोध सुमरत स्वामी सर्व का पाओ पंजना। नानक पयंपे चरण जंपे पावन पत पुनीत नाम निरंजना। ओढ़ गही गोपाल दयाल कृपा निदे। मुए असर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण कर्ण स्वामी पतत उदन हर हरे। सागर संसार पावे उतार नाम सिमरत बहुत तरे। आद अंत व्यंत खोजे सुनी उदरन संग विदे।
नाग पयंपे चरण जंपे ओढ़ गई गोपाल दयाल कृपा निधे भगत वचिल हर बिरद आप बनाया। जय जय संत आराधे तह तह प्रगटाया प्रभु आप लिए सुमाए सह सुपाए भक्त कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयंपे चरण जंपे भगत वशल हर बिरद आप बनाया। आसा महला पंजवा तिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाके ग्रेव हर ना हो सो सदगी रावे अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दैज पूर्ण ससद प्राण पत गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम पावे नानक वखाने गुरबजन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ताके अंध खणा सुखवंती सानार शोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तिद करे नहीं ऊना सब कछु मदरबानी तेरे मानी फिर सुहागता का बना नानक वखाने गुर भजन जाने जाको राम पतार ताके अंधखणा आओ सकी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है तया मिटे संताप आप ने जानाई है शरण गही जे मान लीजे।

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनु एहो पर जोड़ नानक दान मांग जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सड़क ठोर कुलहीन व्याप्त मोहकीच मल परम कर्म अंग ममता मरण चीत ना आवै बनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी सरन साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लगत रहे ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेसे थायो आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुख रनायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ हो ना सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस नु श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावगे हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बसद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही निरपो पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया गए कंठ लाया गुरमिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रब एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे अग्न सागर पए शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण सा संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे घड़कड़ वासी आप विरले किने लया जलसल मैयल पूर पूरन कीड़खत सुमान्या आद अंते मसोई गुर प्रसाद दी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान कराव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया मिल सा संगे नाम रंगे मल होड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

मूसत मन चोर हे, दिन करो अन दिन खात, दिन खात जात बिहाद प्रभिन, मिलो प्रभ करना पते। जन्म मरण अनेक बीते, प्रे संग बिन कछ नह गते, कुल रूप तूप ज्ञान हीनी, तुझ बिना मुहे कमन मात। कर जोड़ नानक सरण आयो, प्रे नाथ नरहर करो गात, मीना जल हीन मीना जल हीन हे, ओ बिशरत मन तन खीन हे, तत जीवन प्रे बिन होत, सानमुख सहबान हे, मृग अर्पे मन तन प्राण हे।

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिस भागे, मिलनहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए हान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

ताही सालाहन दर्शन रूप अपार। तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास भयकार। योगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। सतिया मन संतोष उपजय।

पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिले सच, ता तिन्ही सच कमाया। सदगुर मिले सच पाया, जिन कै हिरदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी, मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है, पढ़ पढ़ परिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख एक गल, होर हो में चखना चाख, महला पहला, लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ पवे आते।

तोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं साभोट निश्चौ कर्मं कौ नानक नेत्यो त्यावे वेण सदगुरवाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे तीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना सलोक महला पहला दया कपा संतोग सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना यो तुटे ना मन लगे ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहे नामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामन वटे आए ओए बकरा रिन खाया सब को आखे पाए ओए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूड़ सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा या पेवत वड़ तागे अवरा खत ले पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मुन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे देव डेयाईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड़ो वड़ा वड़ मेदनी,

करना कियो कल आपे ही ते तारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है आपन हथी अपना आपे ही काशवारी है। श्लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडिये सदगी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस क्यों न आखिए जे लेखे वरते सोए महला दूजा सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुत्था जाए नानक दोवें कूड़ियां थाए न काई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाई है सो साहिब सदा समा

जियो गुर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया कामन काज जब उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटाकार अंत तऊ मरना ताते सेवियले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संतो, ऐ सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जमनी हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौप दे। एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़।

ब्रह्म पाती बिसन डारी पूर संकर देओ। तीन देव परतख तोर है करे किसकी सेओ। पाखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ। जे ए मूर्त सच

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

मूड में लागे खिन में करे नबेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जोत पावे सत कर माने।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेज सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बस थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या तिन सरपनी खाई। सरपनी ते आ

कर भय सचिरामन जाई बार बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बुझे राम रमत तिस सबके सूझे बाईस चौपद तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ दो तुके सत।

की आस कर जम निहारे सासा। बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हो।

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। तहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजाद कुलखनी सौरे पेये बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी अरहाव कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई।

ते अंतर नाही। आसा तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे बसा। नीच रूह ते ऊज पए है, गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील, हम परे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो,

देखे देखे सुने बोले, दौड़ो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बज क्रम रस कसे लोभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रामत फिरत बो जनम बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिग पल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान

त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारी ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बेबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई अरहाओ जननी केरे उदर उदकम पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्न में रख ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल माहे तांतिस बाहर पंख कीर्तिन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचिया जिन मन होर मुख होर ते कंड

रीत रीत है हर मेरी हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे एहा सेव बनी जियो अरहाओ। हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूड़ी।

मिरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सबको दान दे प्रभ ओह है मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सोह है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिध सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है। पौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश अरहाओ ता गुरु तुमको होए दयाल संत संग तेरी प्रीत तापड़ पात परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता रंग तमासा पूर्ण आसा तवे ना व्यापे चिंता पवर तुम्हारा ओ मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लबटायो।

सगल सिट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव ब्रंज अर सगल मोन जान, गहे ना सकाहे गता। प्रभ की

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिल वरनारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्स पायो बिनस्यो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रोसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती।

गूजरी मोहल्ला पंजवा कबू हरस्यो चीत न लायो धंधा करत बेगानी औद गुणित नाम ना गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनक।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण श्रमण अपार महिमा फिर न होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रगास पए सासंगे दुरमत बुद्ध ते आगी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण प्रयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला तार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे। चेतो बाद देओ बनवाली राम हृदय जप माली। रहाओ उर्द मूल जिस साख तलाख चार बिरजित लागे। सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिवे जागे। पार जात कर आंगन मेरे ओप पत्र डाला। सर्व ज्योत निरंजन संपो छोडो बहुत न्याला। सुन सुखवंते नानक बिनवे छोडो माया जाला। मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म न काला। सो गुरु सो सिख कथियले सो वैद जे जाने रोगी। ते कारण कामना तंदा नाही तंदे गिर ही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोत सुमाया। मन तद अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दार कथियले सेत वर्ण सब दूता। ब्रह्म कमल मदस्तास रसादन जागत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया। उपदेश गुरु मम पुने ना गर्भं

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच दे मनहार आए जी जब तब संजम सच आधार हर घर नाम दे सुख पाई है तेरी।

भाग परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बन आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसे, हे जग

दुर्मत व्यापे जिन अंतर्म हो गुबारी। संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे साण परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पगमाया तारी। संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। यो प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी। हर एको सूत

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रत्य

हुक्मे सिट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया ज्योति हूँ सब चानना सदगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया माया का मूल चायोन तुरिया सुख

करती रसना शब्द सुहाई पूरे शब्द प्रा मिलया आई वड़पागिया वाहो वाहो मोह कढ़ाई वाह वो करे सही जन सोने तिन को परजा पूजने आई वाह वाह कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी बजक पाठ काया गढ़ पीतर कूड़क सत अभवानी परम फूले नदर न आवनी मानमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लभनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलाइन हर नाम जपानी हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे मेरी मां।

अमृत नाम है गुरमुख पावे कोय वाव कर्मी पाई है आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाई है अनदिन नाम लय मोहल्ला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोची है विण कर्मे ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना होवई ना ए दुख सहावे नानक गुरमुख उबरे सच्चे।

मन की कटिए मैल साध संग उठिया जन मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिन सकर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा बार विडानड़े हुमस तुमस कूकां पईयां राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा सची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर फेटिया होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृढ़ समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया परख खजाने पाए से बौड़ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा वेशो हुए जंबूर खवे न वंजन गाखड़े जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच। महला पंजवा जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पै बिस्माद दे कुदरत तेरिया सरण परे तेरी दास कार गत होए मेरिया। तेरे हथ निदान भावे तिह देहे जिसनु होए दयाल हर नाम से लेहे अगम अगोचर बेअंत।

कौन कहे किन बूझिए, फरमैया आकुल रीब आई हरहाओ, क्यों आका से पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई, ज्यों जल माजे माचलो मार्ग पेखनो ना जाई, ज्यों आका से कड़ू अलो मृत्युना परया, नामे चे स्वामी बीठलो जिन तीन जरया, गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद दूता बशरे थनो बिटारे हो, फूल पावर जल मीन बगारे हो, माई गोविंद पूजा कहां ले चिरावो, आवर ना फूल अनूप ना पावो रखाओ, मैला गर बेरे गए पोयंगा, बेख अमृत बसे एक संगा, तूब दीप नहीं बेदे बसा, कैसे पूज करे तेरी दासा।

स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटया अंधेरा दुख नाठा, आम्यो हरस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया, हार पाएड़ा कर आए। अराग बिहागड़ा महला पंजवां,

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रेलाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइये। नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इस पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध मंगल रस कना। प्रगटे गोपाल गोविंद लालन।

बिनवंत नांग सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारु सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय सुमाणी राम अकथ कहानी तिनी।

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भए

कोड़ अपराध परे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पिखत संग सब कै प्रभ नेरहू ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम माया मोए मगन कढ़ लिहो मुरारी राम लोभ मोए विकार बद्ध्यो अनक दोख कमावने अलिप्त बंधन रहित

बिख माया तन संच मर अंत होए सवशार कर्म धर्म सो संजम करे अंतर लोभ विकार नानक जे मनमुख कमावे सो थाए ना पावे दर गए होए खुवार पौड़ी आपे खाणी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे आ समुंद आप गए सागर आपे ही वेचे रतन तरे आप लहाए करे जिस किरपा

चौथा बिन सदगुरु सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमावे बिन सदगुरु सेवे ठवर ना पावही मर जम्मे आवे जावे बिन सदगुरु सेवे फिक्का बोलना नाम ना बसे मन आए नानक बिन सदगुर सेवे जमपुर बदे मारी है मुए काले उठ जाहे महला तीजा एक सदगुर की

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई, इते न ले आ जाए। गुर कह शब्द भेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है,

मान यो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद है खर्चे तोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई हांत कदे न होए नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर ओथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जा।

मोनी वर्तदा आपे कथे गयाना कौड़ा किसे ना लग गई सब ना ही पाना उस्तत वर्ण ना सकी है साध साध कुरबान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुगद गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार। पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए। महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हार संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

निर्मल नाम से मन आए, परम में भूला फिरे संसार, मर जन्म में जम करे खुवार, नानक सेवड़ भागी जिन घर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़ांस महला तीजा, हम में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हम में सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो हम में जाए रखाओ, हम में सब शरीर है, हम में ओपत होए, हम में वड़ा गुबार है, हम में विच बुझ न सके कोए, हम में विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हम में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हम में गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को पव ठाकुर।

मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हौ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हौ क्यों कर फिर को मिलो ए आनी। जो पिर पावे सा सुहागन, साई पिर को मिले सियाणी। हरहाओ मैं बज दोस, हौ क्यों कर फिर पावा। तेरे अनेक प्यारे हौ पिर चित न आवा। जिन पिर रावे सा पली सुहागन, सह मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागन। नित सुहागन सदा पिर रावे, मैं कर्महीन कभी गल लावे। तू पिर गुणवंता हौ औगुण यारा, मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वढ़ांस महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर घर दर्शन पावा। हौ जाए पुछाए अपने सतगुरे, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझे गुर सबदी, हर घर सदा ते आए। नानक जिस नर करे मेरा प्यारा, सो हर चरणी चित लाए। हौ सा वेश करी पिर कारण, जे हर प्रसा जे पावा। सो पिर प्यारा मैं नदर ना देख, हौ क्यों कर तीर्ज पावा। इस कारण हौ सीगार सिगारी, हो पे रत्ता मेरा अवरा। नानक तन तन तन सुहागन, जिन पिर आवेड़ा स सवरा। हौ जाए पुछा सुहाग सुहागन, तुसी क्यों पिर पायड़ा प्रा मेरा। मैं ऊपर नदर करी पिर सच, मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा। सब मन तन जियो करो हर प्रभ का।

नेतन सेव करी हर जन की जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला।

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रमेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब ही साध

सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दिट सुजानी, सचगुम तुम्हारा तत् निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभु विनासी, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहेब परपुर लीना, वढ़ंस मुहला पंजवा, तू बेअंत को बिरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाने, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे, अरहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिसे जनावो

मन निर्मल कोई संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पाव वढ़ंस मगला पंजवा साध संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ंस महला पंजवा।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर।

तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी कोकन कोकला तरल जवानी तरला जवानी आप पानी इस मन की पूरी है सारंग जो भगत तरे ठिम ठिम आप संधूर है श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास वरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला जिस

हरा बीज अनदिन नाम खाने गुण संग्रह अवगुण विकने आपे आप शाने गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस पीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमति मन कर वसया, सत्य शब्द बैरागो राम। मुख मस्तक भागो सद बैरागो, ताचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना, सब देखो में मारी। साचे शब्द लाग मत उबजे, गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन, हर आवे मस्तक भागो। खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वड्याई राम। गुरमति हुक्म बूझिए, हुक्मे मेल मिलाई राम। हुक्म मिलाई सह समाई, गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच सवारण हारा। पाओ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन, अगम अगोचर हुक्मे रहया सुमाई। वढ़ांस महला तीजा, मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो। अपने कर तू सुख वस, ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके, साचे शब्द लिवलाए। सदा सच रत्ता मन निर्मल, आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विभूति, मन मुखमोही जम काल। कहे नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्त ना पाल। जो पावे सो पूछ तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर घर नाम सखाई। मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे, दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही, साबादी जमकाल। नानक अंतर तेरे निधान है, तू बाहर वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै, एक सच लगे वापारा। सतगुरु सेवने अपना, अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा, हर नाम प्यारा। नामे नौन दपाई, मन माया मोवे आपे। दू संतापे दूजे पद गवाई, होमे मार सच शब्द समाने। सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है, सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवने अपना, से जन्मड भागी राम। जो मन मारे अपना, से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी, अपना आप पछाणिया। मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख, सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी, माया मुहे प्यारी। मनमुख सोए रहे अपागे, नानक सहजे सेवे गुर अपना। से पूरे वड़पागे, वढ़ांस महला तीजा। रतन पदार्थ वणजी है, सतगुर दिया बुझाई राम। लहा लाभ हर भगत है, गुण में गुणी समाई राम। गुण में गुणी समाए, जिसे आप बुझाए। लहा भगत सह सारे, बिन भगती सुख ना होई। दूजे पद खोई, गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है, जिसनु एत वापार लाए। रतन पदार्थ वणजी है, जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है, खोटा यो वापारा राम। कूड़ बोल बिकामणी, बहु वदे विकारा राम। बहु वदे विकारा सहसा यो संसार, बिन नावे पद खोई। पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे, बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे न चूके, माया मोह प्यारा। माया मोह सब दुख है, खोटा यो वापारा। खोटे खरे सब

प्रभु कमाई मेट न सके कोई जिन सिट सा जीसो कर वेख हे जेवड़ अवर न कोई मनमुख अंधा तब तब खपे बिन सबदे सांत न आई नानक बिन नावे सो कोई फुला माया मुए खुआई इहो जग जलता देख के भजपे हर सरनाई राम अरदास करी गुर पूरे आगे रख ले वो देव वडाई राम रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई तू जेवड़ अवर ना दाता सेवा लागे सेवड़ पागे जो जुग एको जाता जात सत संजम कर्म कमावे बिन गुरगत नहीं पाई नानक तिसनु शब्द बुझाए जो जाए पवे घर सरनाई जो हर मत दे साई उपजे होर मत न काई राम अंतरभार एक तू आपे दे बुझाई राम आपे दे बुझाई अवर ना पाई गुरमुख हरस चाखिया दर सचे सदा के सचा सचे शब्द सुपाखिया घर में निज कर पाया सदगुर दे वडाई नानक जो नाम रते सेई महल पायन मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा शंत एक ओंकार सदगुर प्रसाद मेरे मन सदगुर प्रीत लगाई राम हर हर नाम मेरे मन वसाई राम हर हर नाम मेरे मन वसाई सब दुख विसारण हारा वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सदगुरु हमारा उठत बैठत सदगुर सेवे जित सेवे।

सदगुर देख सरसे राम, हर नामो हर नाम दृढ़ाय, जप हर हर नाम लिखसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निंद पाई, हम में रोग गया दुख लाता, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सदगुर ते पाई, सुख सदगुर देव मन परसे, हो जीवा सदगुर देख सरसे, कोई आन मिलावे, मेरा सदगुर पूरा राम, हो मन तन देवा, इस काट श्रीरा राम, हो मन तन काट काट दे, जो सदगुर

करो सुखदाते दियो सतगुर चरण गम तूरा। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा। सेवक पाए मिले वड़ पागी जिन गुर चरणी मन लागा। कहो नानक हर आप मिलाए मिल सदगुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वढ़ांस महला चौथा हाँ गुरबिन खरी निमानी राम। जग जीवन दाता गुरमेल सुमानी राम। सदगुर मेल घर नाम सुमानी जप हर घर नाम तिहाया। जिस कारण हों ढूंढ ढूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हों गुरबिन खरी निमाणी जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया।

वे तिनके जिन सदगुर पुरख प्रत्याया तू वड़दाता अंतर जामी मेरी सरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आनंदन राम गुण गाए जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नामो हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सकाई तिस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे हर आपे पुरख निरंजन सोई राम हर आपे मिले करे सोई राम जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाण पलया न जाई तर थाके सबच तराई गुर प्रसाद जन नानक देखया मैं हर बिन अवर न कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई वढ़ांस महला चौथा हर सदगुर मेल हर सदगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सदगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना से सदगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे जिन कौ हर प्रा कृपा तारी ते सदगुर सेवा लाया हर सदगुर मेल हर सदगुर चरण हम पाया मेरा सदगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम हर नामो हर नाम देवे मेरा अंत सकाई राम हर हर नाम मेरा अंत सकाई गुर सदगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत कलत्तर कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छिड़ाया तन तन सदगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम त्याई मेरा सदगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई मेरा सदगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख न पाया राम तन नेपल जन्म सब बिरथा गवाया राम नेपल जन्म तिन बिरथा गवाया ते सागत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ पूखे पागीन घर दूरे हर घर तिनका दर्शना करियो जिनी हर घर नाम ना त्याया जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख ना पाया हम चात्रक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सदगुर करे भगती राम हर घर सदगुर करे भगती या हर प्रा कृपा तारे मैं गुर बिन अवर न कोई बेली गुर सदगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर घर नाम घर सती हम चात्रक दीन हर पास बेनंती वढ़ांस महला चौथा हर कृपा कर सदगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे सदगुर पास घर बाता राम सदगुर पास घर बाद पूछे जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे नित करे बेनंती गुर सदगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख संत कर जाने हर घर नाम घर राता हर कृपा कर गुर सदगुर मेल सुखदाता सुन गुरमुख नाम सा बिलसे होमे पापा राम जप हर घर नाम लथेड़े जगता पा राम हर घर नाम जिनी आराध्या इनके दुख पाप निवारे सदगुर ज्ञान खड़ग हद तीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रा कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम
ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਹਉਮੈ ਪਾਪਾ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ, ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ, ਆਰੋਗਤ ਪਏ ਸਰੀਰਾ। ਅਣ ਤਿਨ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਕਰ ਲਾਗੀ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਜਾਤ ਅਜਾਤ ਨਾਮ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਤਾਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਓ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ਰਾਮ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਹਰ ਦਿਆਲ ਸਰਣਾਇਆ। ਤੂੰ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਪਾਤਰ ਤਰੇ ਤਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਾਰੇ। ਹਰ ਤਾਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਓ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ, ਰਾਮ ਪਾਈਆ ਰਾਮ। ਤਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਮਾਨ ਜਨਮ ਵੜ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਸੋ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੜੀਆ, ਏ ਦੇਸੋ ਬਾਂਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਜਾਪੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮ ਸਕਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਉਹ ਪਾਈਆ।

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संतां जा।

ना जानई। अज्ञानी अंध अंधार, रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझणहार। मूर्ख आप गणाए दे मर जमे हुए खुवार, नानक रतना सो लहे जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उचरै

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओस नु सुख न उबजे भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई होमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए सह संजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जो कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसके कर दीवान हर होए तिसकी मुठ्ठी विच जगत सवे आया तिस को तलकी किसे दी नाही हर दीवान सब आन पैरी पाया मानसा क्यों दीवाणो कोई नस पज निकले हर दीवाणो कोई किथे जाया तू ऐसा हर दीवान मसिया भगता कै हिरदय तेन रहंदे खोंदे आन सा भगता अगे खलवाया हर नावे की वड्याई कर्म प्राप्त होवे गुरमुख विरलै कने त्याया। श्लोक महला तीजा।

गई वजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जाने सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औगुण चेतड़े।

की खबर ना पाई, अखी मीड चिल्लिया अंधियारा, हर दर दिसे ना पाई, जम दर बादा ठौर ना पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताय अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गोविंद परम ना पागे सच नाम वड़ियाई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज विड़ाणा जल थल।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

नाच माद पिता सुदबंधव नाच कामना नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे चूटे शब्द कमाई सूचे पांडे सच समावे विरले सूचा चारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यू साकत मरे प्यास त्यू हर बिन मरिये रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाई है हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

मन रे समझ कवन मत लागा, नाम सार अनस लूप हन, फिर पछताए अभागा रखाओ। आपत को हरख जात को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हर ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया,

आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूद तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाह दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे सोए।

जाप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याए तू हर हर, बौड़ न आवन जान रगाओ, आपे ही गुमरत दा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बख्श तराए दा प्यारा, आपे सच निशान, आप गुमरत दा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे पगत भंडार है प्यारा, आपे देवै दान, आपे सेव कराए दा प्यारा, आप दिवावे मान।

संत संगजा का मन शीतल, ओ जाने सगली ठंडी। होमे रोग जा का मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया, ताको सर परगासा। अज्ञान अंधेरे सू सनाही, बौड़ बौड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांगे।

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ते नर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिस्रे मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जने आई रखाओ जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुगे प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिगलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक घोर में परया जित को लाया तित घी लागा ते सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो क्यों हर नरचे ज्ञानी हर जन को ई सुहावे पेड़ निट कर सेवा सदगुरु

प्रसंतय से हितकारी, विद्या में विद्यं सीरतया, नयन देख सो पावे, जैसे रसना साध लुभानी, त्यो हर जन हर गुण गावे, जैसी भूख तैसी कापूर, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रमिलया अंतर जामी, सोरठ महला पंजवा, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे।

तुम सबसा जे सा जनेवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुनियारे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम ए हवाला राग संतन कै पाछै।

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखया पाई यो मन तेरा पाई रखाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हमला खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो वाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हरसो मन मानिया हरंगर ते विस्मादे। सोरठ महला पंजवा जेती समगरी।

मन से अविनाशी ताको बिघन न को लागे जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाखे हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दाता के बलिहार जिन पूर्ण पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगर अंधियार है देवना।

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए शानी रखाओ। जे बा स्वात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ लियो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी। जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाई है हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमर है सो जीव है, जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीव है। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी आन दिन हर अंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कदा सुहेली, आद अंत मद नानक हो तो प्रभ हो आबेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संतो या बताव होकारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म कर मानिया होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी। सोर

ए भीतर ते इनको डार हो, अपन निकट बुलावो, अपनी बेद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ, विसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट्यू वड़ पागी, जन नान कते ना ताव, सोरठ महल्ला पंजवा, जाके सिमरन सब कछ पाइये, विरती काल ना जाई, इस प्रत्याग अवर कतराच्यो, जो समय रहया सुमाई, हर घर सिमरु संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ, सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नांग प्र तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे

मिले स्वामी प्रीतम अपने, हर मंदिर सुखदाई, हर नाम निधान नांग जन पाया, सगली इश पुजाई। सोरठ महला पंजवां, गुर के चरण बसे रिध पीतर, शुभ लखन प्रभ कीने, हय कृपाल पूर्ण परमेश्वर, नाम निधान मन चीने, मेरो गुर रखवारो मीत, दून चौनी दे वड़ियाई, थोबा नीता नीत रहा, जी जन प्रसगल उधारे, दर्शन देखन हारे, गुरपूरे की अचरज वड़ियाई, नानक सद भले हारे। सोरठ महला पंजवां, संचन करो नाम तन निर्मल, तरती अगम अपार, बिरछ मनोद आना सुगमानो, खाए जीवो सिख परवार, हर के चरण कमल आधार, संत प्रसाद पायो सर भोयत, चढ़ लंगो बिर संसार रघा, हे कृपाल पूर्ण अविनाशी,

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नि सहसा चुकाया सिगदारो न पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभदे अपनी पाई ता कते आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम साय हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुर पूरे सत कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आंध सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर सिनाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकि कीमत कह न जाई सिर साहा पातशाहा उर पेड़ मन ओ माहा सगल पराज तलाथे मिल सा संत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा हलसट करे जयकारा नानका मेरे साथे जन्म मरण फैलाथे तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी प्रा पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए अंध मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याईये आन दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पागी पाए कोड़ जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्त करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जन सब पय पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन मिरासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाव पय सा पावन जन नान सो कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पय दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा पौ कते नहीं प्रसरणा अरहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल तन तकिया तेरा तू पार उठा गुरु मेरा जिन जिन सा संग पाया तू प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया फुजल खेम सब थिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाईये सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रखाओ हर चरण की ओर सतानी

पूर्ण होई आसा। जय पेखा तै सोई हार प्रभ अवर न कोई, कर कृपा प्रवराखे साब जन्म जन्म दुख लाथे। निर्भउ नाम त्याया अटल सुख नानक पाया। सोरठ महला पंजवा ठाण पाई करतारे, ताव छोड़ गया परवारे। गुरपूरे है राखी तरन सचे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। सांत सहज सुखिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला। रहाओ हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग बिदारू। अपनी कृपा थारी तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वे से वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवा गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा पा मेले हर गुण गावो सदा सुपाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइय बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख बिधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्य सगल सुवारे हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सा संग मिल त्याई है मान बांछित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दय सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रो मायो एक उसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत देस निकटायो पांबीरी के पाद पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक होमे पीत गुर खोई तौ दयार बीठलो पायो तब रहो अंधेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मलायो।

सुने प्रा तू है सब कुछ करने हारा तू आपे दाता आपे भूता क्या यो जंत विचारा क्या गुण तेरे आख बखानी कीमत कहन न जाई पेख पे जीवे प्रव्यपना आचर्य तुम्हें वडाई तार अनुग्रह आप प्रा स्वामी पत मद किन्नी पूरी सदा सा नानक बलिहारी बाछो संता तूरी सोरठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारे।

गुण गाई गुरपूरे ते पाई रहाओ। प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुरपूरे ते जानी। सोरठ महला पंजवां आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वडियाई मान इच्छे बल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ। जी जसा पय दयाला प्रभ ने कर दीने सह सुखाय मिले गोपाला

की ओटा जो सिमरत हकीकत होवे उधर है सगले कोटा रगाओ संत संग जस गाया यो पूर्ण गर्तन पाया को नानक।

तेरी ओट गुसाई तू समर्थ शरण का दाता आठ पैर तुम त्याई रहा। जो जन भजन करे प्रतेरा इसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पो मिटिया हर गुण गाए मन माही। दुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सोभा सेती पूर्ण हुई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी पूर्ण प्रभु के कामा गुर चरणी लाग तरयो पौ सागर जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा हयो किरपाल दीन दुख पंजन आपे सब जथाटी फिन मैं राख लियो जन अपना गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सत्याई है सगल कलेस मिटे स्थान ते मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जी जंत जाके सब कीने प्रभु ऊंचा अगम्य पारा सा संग नानक नाम ते आया मुख उजल पै दरबारा। सोरठ महला पंजवा तिमरो अपना साई दिन सरैं सत्याई।

सुख पुंचो मेरे पाई। सोरठ महला पनवा सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे थारे। राख पैज नाम अपने की करन करा मनहारे। प्रभ जीओ खुशमाना कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार सुमरा सुवा।

जागृत तो बैरागी सबनम विद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंगराता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेतर सोतर।

समाए सदा सच्चे का पौ मनवस ता सबा सोजी पाए सगुर अपने कर वर्तदा आपे लय मिलाए नानक सतगुर मिले ऐसा पूरी पई जिसनु कृपा करे रिजाए पौड़ी तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मोह कहते आ तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनते आ तन तन भाग तिना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ तन तन भाग तिना गुरमुखा जो गुरसिख लय मन जिनते आ सब दू वड्डे भाग गुरसिखा के जो कुरचरणी सिख पढ़ते आ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे थिदा ब्रह्म तरह एक शब्द लिवलाए नव निधि अठारे सिद्धि पिछे लगियां फिरे जो हर हिरदे सदा वसाए बिन सतगुर नव ना पाईए बुझो कर विचार नानक पूरे भाग सगुर मिले सुख पाए जुग चार महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मानो तिस ना भुख न जाए गुरमुख शब्दे रतिया शीतल होए आप गुवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख न लगे आए नानक जे गुरम करे सो प्रवान है जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी हौ बलिहारी तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ते आए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो सब किलव किरखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर तरे विखा सलोक महला तीजा गुरबिन ज्ञान न हो वई ना सुख वसे मन आए नानक ना विहूणे मनमुखी जसन जन्म गवाए महला तीजा सिद्ध साधक नावे नू सब खोज दे थक रहे लिवलाए बिन सगुर किने ना पायो गुरमुख मिले मिलाए बिन नावे पहनण खान सा बाद है तिग सिद्धि तिग करमात सा सिद्ध सा करमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसे एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के निद गावे हर गुण संता हर कीर्तन करे हर जा सुने तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया।

ही अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु पागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहा सुमाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंगराता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बलोमन को माटा। ताकी हो बलोमन हारी, क्यों मेटैगो शाश तुहारी। चेरी तू राम न करस पतारा, जग जीवन प्राण।

रहे हो, ऐसो बेडी बरना साको सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखे पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

अनमड़िया मंदल बाजे मेरे सामन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मेरे ओ राम स्नेही जे मिले देश सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया सुपने पया पिकारी अशतराज बिशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनक कटक जैसे पूर परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कड़ भुग सोई कहे रविदास हाथ पैने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांद कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तउ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास फलक एक बाडी आप हे कासु कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाब जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब वेके अराज इंदर समसर गृह आसन बेनहर भगत कहो के लेख ना बिचारो राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ जान अजान पे हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं तयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया कै रविदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया सुख सागर सुर पर चिंता मन काम तीन बस जाके चार पदार्थ अचतसा सिद्ध नवृद करतल ताके हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाध उपात रहित फुन बड़े भाग लिव लागी कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पै है चकूरा माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यों तोर तमन स्यों जू रह रहाओ जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीर्थ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी।

पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन होए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई, लोग ठा

पुन पदार्थ पाया, आनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपेश पाया, हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठियाई रहाओ, रसना रमत सोंत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दुई नयन संतोखे, जय देखा तय सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपद, एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निरवैर अकाल मूर्त, अजूनी सह पहं गुर प्रसाद।

अनदन साहिब सेविए अंत छिडाए सोए सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सद कुरबाने जाओ रहाओ सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे तुझ बाज प्यारे केव रहा सावड़े आई देह जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए।

सास मास सब जीव तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे पर्वत गारा। जे तू किसी ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोग छिपाई है पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चेतन किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते आ मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तपे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए। तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए। क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए। ता पत रहे आराखे जा सोए जै देखा तै रहा समाए। तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए। जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल। क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए। बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा। नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई उत्तर कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे। साहिब पावे सो प्रवान सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार साची बाणी सो तरे प्यार। ताको पावे मुख द्वार जब तब सब इहो शब्द गए सार। तनासरी मोहल्ला पहला जीव तब है बारो बार। तब तब खावे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए। जो पक्का रोगी बिल लाए बहुता बोलन चखण होए। बिन बोले जाने सब सोए रहाओ। जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात। जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पावन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कारख दागा दाग। दाग दोष मुझ चलिया लाए।

पाग साच रते अहे निस बैराग क्यो जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी मोहल्ला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मनमाहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच

सुखेत बढ़ायो कामल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हित कुंतर लै फंकेओ ओ पार वस पयो बिचारा नाद हेत सिर डारो कुरंका उस ही हेत बिदारा। दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया कौ लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्री प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बसन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म सार पसायो पीतर ता गुर ते सोजी पाई। सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा। तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। अब होए राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पए बिबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुरबाणी। तनासरी महला पंजवा जिस का तान मन तान सब तिसका सोई सुड़ सुजानी तिन ही सुनिया दो सुख मेरा तौ विदनी की खटानी। जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रखाओ अमृत।

वो मन छूट बिरस जाए परमाई अंध रूप रवे उसा मध्य जल कद पेखो जाई तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई पोर सूख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक त्रिपत अघाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पावन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा प्रभ की ओढ़ गई तो छूटो साद प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज तब हुटो हरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काड़ किसी पै सगले लर लर मुआ औ बलगारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काट।

खंड हो अनकबीरी समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरध रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमगी सजन सुहेले। रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना

नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे। हुक्म ना बूझे आवण जाने, पाप करे ता पछोताणे। जो तु पावे सो प्रवाण,

स्वामी सा मसलत प्रवान रघाओ पद परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभते पाए कंठ लाए गुर रखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर भाखे जिन कै मन साचा विश्वास पेख पे स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण सरन पूर्ण परमेश्वर अंतर जामी साखेओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखेओ तनासरी महला पंजवा जय जय पेखो तय हजूर दूर कतहो ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछड़े तो संगी गनिये बिन सजाए जो निमुख मैं तो अल्प सुख भनिये रहाओ प्रद पाले अप्याओ दे कश ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रसोई आशल अशेर अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज आनूप साम देव दयाल प्रभ।

राम नाम रंग जागा, आस शीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा। राव जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उदक पीवत जन नानक,

जाम रहाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाईए प्रब के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाईए दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे तिन साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतो होवे गुरबजनी प्रसव लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोर बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया।

टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार हरहाओ। जय जय देखो तय तय स्वामी, कोई न पहुंचन हार। जो जो करे अवग्या जन की, होए गया तत्सार। करन हार खवाला होवा, जाका अंत न पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काढ़े मार।

अगन प्रव्याप बुझाई, नानक उदरे प्रव शरणाई। तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया, मन तरसना नाम थे आया। जीवन हर जप साध संग रखाओ। अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए, अनदन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ आस असवारी।

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता।

प्रेम भगत कर सहज समाय, सर्वमय हंस हंसमय सागर, अकत कथा गुरु बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे, तिर पवन जो तरहे लिवलाई, तुर नरनाथ सचे सरनाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वशल पे काटन हारे, होमे मार मिले पगतारे। आनकजन कर कार संताए, मन न लखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबधा खोवे, आप न चीनस प्रम प्रम रोवे, है तो पढ़तो सुन तो एक, तीर्ज धर्म तरणी तर टेक, जात सा संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द परम पौ पग, तूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साज स्वरूप, तनासरी महला पहला, सहज मिले मिले या परवान, नाथ स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दास दास मैं सोए, जय देखा ते अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाइये, बिन गुर फेटे मर आइये जय।

आपे देखै फड़ ना पतीजै ना बो पेखै हर पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रामण पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करे प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी पिर कर सोहे नार।

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया, पूर है या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो, आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोय निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार

मस्तक बस्ता सुरश्री स्नान रे उलझन मध्य मिले ओ सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी विश्व का दीपक स्वामी ता तेरे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बांधवा कर्म कर अरण पिंगला अनक पादक हरता तेरे फौन नासरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लहे ना पारी कर्म कर कपाल मफीट सरी अमृत सेसी ते लक्ष्मी कल्प तार शीघ्र सुनागर नतीचे नाथं कर्म कर खार मभीट सरी दादी ले लंका गाड़ ओ पाड़ी ले रावण बाण सल बसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मभीट सरी पूर्व लो किरत कर्म ना मिटेरी कर गेहन ताचे मुए जापी ले राम चे नामं पदत तरलोचन राम जी श्री सायण तूब दीप कृत साज आरती वार ने जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को हरहाओ ओतम दीरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती आरामा भगत रामानंद जाने पूर्ण परमानंद बखाने मदन मूर्त पय तार गो

नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी पिन गाक मीका काखा रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा हरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर तेन का रतन लाखा ते उजड़ परमु गावारी माया पोयंग बिख चाखा हर घर साग मिलो जननी के हर साधु सरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाण है तो वड़ अगवड़ पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैत सरी महला चौथा हम बार कशु न जाने गातमित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सयाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

आपे सदगुर समुंद मथाहा आपे मत मत तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन पाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वरदाना वरसह गुरमुख पूंजी नाम सहा हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला चौथा मेल सत्संगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर घर कृपा तार मधुसूदन मेल सत्संग ओ महाराम हर गुण बाणी सरम सुनाहा हर कृपा सदगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम तब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा हर घर नाम ना पुजे पुजाहा हर घर अतुल तोल अदपारी गुरमत जप ओ महाराम तब कर्म तर्म घर नाम जपाहा किलविख मैल पाव तो वाहा दीन दयाल हो जने ऊपर त्यो नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जगमीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत रखाओ माल पिता बनता सुत बंधव इष्ट मीत अर पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई मुक्त माल तनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बेहानी अवधे ता मैं संतोख न पाया हस्त रथ असव पवन तेज धनी भूमन चतुरंगा कंगना चलो इन मैं कछुए ऊर सिधायो नांगा हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइये नानकीहा सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइये जैत श्री महला पंजवां घर तीजा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दियो संदेसरो कहियो प्रे कहियो विष्णु भई मैं बुबद सुनते कहो सुहागन सही यो रघाओ को कह तो सब बहार बहार को कह तो सा महियो वरना दिसे चेन लखिए सुहागन सात बुझियो सर्व निवासी कड़कड़वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहे तो सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जैत श्री

आवे, नाद को रंग के बेदया सन्मुख उड़तावे, पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे, तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे, श्लोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधने, नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है, सीतड़ा मन मजाहे पलक न थीवे भारा, नानक आसड़ी निभाहे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी, आसावंती आस कुसाई पूरी है, मिल गोपाल गोविंद ना कबहु चूरिए, त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरिए, कोय पवित्र शरीर चरना तूरिए, पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरिए, श्लोक रसना उच्चरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है, नांग तिन सद बलिहारं जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण, हब कूड़ा वे कम एक साई बारे, नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी, सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था, हार्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था, चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था, संता संग उधार अगला दुख लत्था, श्लोक पावी अदोद करण आरमण संजोग पूर्ण है, गोपाल दस फेटं सबल नांग सो मुहूर्त, तीव न सकता पाए सोख मिति हु बारे, नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी, सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई, तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई, आड़ पैर

अवर न कहू तानी। ऐसो अमर मिलो भगतन कहो राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा अमर हर जने नहीं निकटानी। निर्भ हो रहे ले एक नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तोखा कहां व्यापे जाको ओढ़ तुहारी। अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी। टोडी महला पंजवा हर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मान दहदस तायो माया मगन स्वाद लो मोयो। तिन प्रभ आप पुरायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो। एक मोहतना यो मन लायो बिगसो पेख रंग कसुंभ को पार गए जो हुन जायो। चरण कमल स्यो पाओ न कीनो नय सत पुरख मनायो। ताकत को तावे बो पाती क्यों तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखयो न बूझो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव ते आयो। पंच दूत राज संगत गोष्ट मतवारो मधमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो। नानक पाग प्रयोहर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया। अनक सा सीगार बो करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो।

स्वामी सगल रेण होए रही है, साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लइए। सदा सदा हम शोहरे तुमरे, तू प्रभ हमरो मीरा, नानक बारक तुम माध पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा तार दूजा दो पदे, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, मांगो दान ठाकुर नाम, अबर कछु मेरे संग न चाले, मिले कृपा गुण गाम रखाओ। राज मार अनेक भोग रस, सगल तरवर की शाम, ताए ताए वो विद को थावे, सगल निरार्थ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो, दिसे सगल बात है खाम, पौ नानक संतरे न मांगो।

परे उधर बारे कोड अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे तरब अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाएगे माया रच बंद हारे चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी अरहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचो जिद पूग तसायो अमृत नाम तुसा नहीं पायो ताम क्रोध मोह कूप परेया गुर प्रसाद नानको तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ वड्डे पागुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताब्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया।

प्रसाद रूड़ो महारंगो लोड़े काली हर नीहो ना होए रहाओ हाँ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुरमिल परम गवाया हे एबद पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुर माते एबद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे हियो महराज री मायो तीघर न्याई मुए फाट्यो रे हरहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महराज रो गात वाऊ सुन लुबड़ो ने भगड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख सजन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे जाको लैणो महराज री गाठड़ियो जरनान करभास ना पौड़ो रे टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख अर अंग रोग ए तंत सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मुए हर रंग पीन पेख्यो लालन पाड़ बीज खोए अंध चिता हरखे पति।

यही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रखाओ प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट को सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत इट तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीन के दाते

मध्य गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे अज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ ते तीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको पुर सतगुरु दान देवा।

जन नानक कहो हर भेटे स्वामी, दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहाओ। जुगज करे सो आपे स्वामी, अरे आपे।

हरयापे सहु सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे तो साहु सचा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर राखे उदर मंजारा सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान हर अंत शिडामन हारा जाक हृदय बसया मेरा हर हर इस जन कौ करो नमस्कारा हर कृपा ते पाएगे हर जप नानक नाम अधारा बैराड़ी महला चौथा जप माना।

तन मैल न पावे, विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाई है, जो किश करे सो पला करमानी है। हिकमत हुक्म चुकाइए, जा के प्रेम पदार्थ पाइए, तौ चरणी चित लाइए। सौ कहे सो कीजे, तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाइए। एव कह सुहागणी पैणे, किन्नी बाती सो पाइए, आप गवाएगे ता सो पाइए, और कैसी चतराई। सौ नदर कर देख, सो दिन लिख, कामण नौ निध पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागण, नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती, अहे निस पाए समाणी। सुंदर साए स्वरूप चखण, कहिए सास।

गुरु साबास है हर देश स्नेहा औ वेख वे गुरु विकसया गौर सतगुर देखा गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना तुक सब जावी हर का मार्ग आखिए कौ किदबद जाइए हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आरा दया चेसा वरदाने हौ सतगुर कौ सदवारिया गुर भजन समाने तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी।

निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही। मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे। कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो। कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रहाओ। मात पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मै दीना। जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो। तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है। कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मनिहो लगायो। काल फास जब गल परी

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी, जे को लए विकाए, नानक कम न आवई, जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला, कार सतवां, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता, जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए है, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, योगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर चरे सह तुन लाग, करगी परचा पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, नानक जीव त्यामर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सिंगी वाजे, तौ निरभौ पद पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिल हारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को रा होए, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए, अरहाओ अरवदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नाग तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्शया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, इनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई, गुर कृपा ते घर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, हरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर माणक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वड्याई, हर तन निरपौ सदा सदा, अस्त रहे साचा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वड्याई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सा

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीज, कुचल कठोर

सुनी न जाए। सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा

कामना तौल हार जित हर बिसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना कितै काज जित नहि त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाट पटंबर बिरथिया जे रच लोभाए सब किछ तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास

तेन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन

दे चाखी तृष्णा अग्न बुझाए, गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रहा सुमाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर के पाए प्यारे, सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। एक को सच्चा सब में वर्त, विरला को विचारे, आपे मेल लहे ता बगसे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वर्त, गुरमुख को ई जाने, जमण मरण हुकम वर्त, गुरमुख आप पछाणे। नाम त्याए ता सतगुर पाए, जो इच्छे सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवे, जे विचों आप गवाए। सूही महला तीजा, काया कामण अत सवालेओ, फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द सुमाले, हर की भगत सदा रंग राता, होमे विचों जाले। वाह वाह पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर ते उपजी साज समाणी। अरहाव काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर, जग जीवन दा तावस। सब ना करे प्रतपाला, काया कामण सदा सुहेली, गुरमुख नाम सुमाला। काया अंदर या पे वस, अलख न लखया जाई, मानमुख मुगद बूझे नाही, बार पालन जाई। सदगुर सेवे सदा सुख पाए, सदगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ, भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बाजार। इस काया अंदर नाम नौन दपाइये, गुर के शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे, आपे तोल लनहारा, यो मरतन जवाहर माणक, इसका मोल अफारा। मोल किधगी नाम पाइये नाही, नाम पाइये गुर विचारा। गुरमुख होवे तो काया खोजे, होर सा परम खुलाई, जिसनु दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसाद दीपाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पासारा, पूरे सदगुर आप दिखाया। सच नाम निस्तारा, सा काया जो सदगुर सेवे, सच्चे आप सवारी। विणनावे दर टोई नाही, तां जम करे खुवारी। नानक सच वडियाई पाए, जिसनु हर किरपा तारी। राग सूही महला तीजा, कार दसवां, एक ओंकार। सदगुर प्रसाद दुनिया ना सहारा है, जो मर वंशी। लोका ना सहारा है, जो मर खाक थी। वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाई है, सच्चा वे प्रवाहो। अरहाओ दुनिया के री दोस्ती, मनमुख दज मरन, जमपुर बदे मारी है, वेला ना लहन। गुरमुख जन्म सकार था, सच्चे शब्द लगन। आत्म राम प्रगासया, हैजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारया, दूजे पाए रचन। तिसना पुख न उतरे, आन देने जलत फेरन। दुष्टा नाल दोस्ती, नाल संता वैर करन। आ डुबे कुटंब स्यो, सगले कुल डोबन। निंदा पली किसे की नाही, मनमुख मुगद करन। मोह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। ए मन जैसा सेवै।

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम फुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया, सदगुर पूछ ना मार।

चाई मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर। सद नवतन बाल सिखाई नानक कृपा करके मिले, विछड़ कदे ना जाई।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना करे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रव है रव रहया हो प्र मेरा स्वामी राम प्र मेरा स्वामी अंतर जमी कड कड रव्या सोई गुरमत सच पाई है सह सुमाई है तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो

सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जीओ, सदगुर मिलिया दयाल गुण अवनासी गाया बलराम जीओ। गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजे वजे अनहदा चुनकारे, सुन पए बिनासे सगल नानक प्रापुरख करणे हारे। उपजा तत ज्ञान सहुरे पेईए, एक हर बलराम जियो ब्रह्मे ब्रह्म मिलिया। कोय न सके बिन कर बलराम जियो, बिस्म पेख बिस्म सुनिए बिस्मादन नहीं आया। जल थल महियल पूर्ण स्वामी, काड़ काड़ रहा सुमाया, जिसते उपजत सुमाए सुमाया। कीमत कहण ना जाए जिसके चलत ना जागी लखणे, नानक तिसे ते आए। राग सूगी शंत महला पंजवा, कर दूजा एक ओ अंकार। सदगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अनदिन जागे, हर रंग जागे पाप भागे। मिले संत प्यारिया और चरण लागे परम भागे, काज सगल सवारिया। सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जावड भागे। बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे। अनहत शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा। गुण गाए हर घर दुख नसे, रहस उपजय मन कणा। मन तन निर्मल देख दर्शन, नाम प्रभ का मुखपणा। होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभावा। बिनवंत नानक दया धारहो, सदा हर गुण गावा। गुरमिल सागर तरिया हर चरण जगत निस्तरिया, हर चरण त्याए सफल पाए। मिटे आमन जाना पाए भगत सुभाए, हर जप अपने प्रभावा। जप एक अलख अपार पूरन, तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई। पतत पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा। गुर संत पाया प्रभ तिहाया, सगल इच्छा पुनिया। हौ ताप बिनसे सदा सरसे, प्रा मिले चिरी मिशुनिया। मन सांत आई वजी वधाई, मनो कदे ना विसरै। बिनवंत नानक सदगुर दरड़ाया, सदा

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुर वड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

जपीए, मिल सदगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो, उन्नी इच्छ सुबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे न आवे जाई राम। अवनासी पाया नाम ते आया, सगल

गुण गोपाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। देख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए। सूही महला पंजवा, आप चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम। करते आप वसाया, सर्व सुख पाया। उत पाई सिख।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सुविगे सुहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ।

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रब रहा सो पुरख सुजान गुरप्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला।

एक दाते एक मंगते, नाम तेरा प्रवान, नाग जिन्नी सुन के मनिया, हों तिना मिट्टों कुर्बान पौड़ी, माया मोह सब कूड़ गए, कूड़ो होए गया, हमे झगड़ा पाए ऊन, झगड़े जग मोया, गुरमुख झगड़ चुकाए ऊन, इको रब रहया, तवे आत्म राम पछाणिया, भौजल तर गया, जोत सुमाणी जोत विच, हर नाम समया, महला पहला, सदगुर भीखिया दे मैं, तू सुमरथ दा तार, होमे गर्भ निवारिए, काम क्रोध अहंकार, लब लोभ पर जालिए, नाम मिले आधार, अहिंस नवतन निर्मला, मैला कभू ना होए, नानक ए बद छुटी है, नदर तेरी सुख होए, महला पहला, इको कंत सबाइया,

तेरी वड़ियाई। एते कुकर हौ बेगाना पौका स्तन ताई, भगत हीन नांग जे होएगा ता खसमे नाओ न जाई। बिलावल मोहल्ला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर, कढ़ी तीर्थ नहावा एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुड़ जय मना आवा। मन बेदया दयाल से ती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई। रहाओ आगम अगोचर अलाख्य पारा, चिंता करो हमारी जल थल महियल परपुर लीना। तड़तड़ जोत तुम्हारी सिख मत सा बुद्ध तुम्हारी, मंदिर शामा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना। मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब शरण तुम्हारी। सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई दंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल मोहल्ला पहला आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान। तू दाता नाम प्रवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हौ जाजक तू अलख्य पेओ। रहाओ माया मोह तरगटी नार, भूडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार। नाम मिले चानन अंधार, चाह छोडी सहसा नहीं कोए, बाप दिसे वे जात ना होए। एक के कहो ना ही पोकोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साते थारिया। अवर ना सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल मोहल्ला पहला गुरबचनी मन सहज ध्याने, हर के रंगरता मन माने। मनमुख परम पुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हार बिन जीरा है न सके खेन। सदगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रा बिसर हौ मरो दुखाली। साज गिराज जपो अपने घर पाली, सद भय रागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, आकथ कथा कही है गुर पाए। पर अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करणी क्या कार कमाए। हौ में मेड़ चले गोर शब्द सुमाए, मानमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास। जन नानक हर नाम तन रास, बिलावल मोहल्ला तीजा। कार पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटंब सहत स्यों, जित हुण खसम न पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया। दूजा भाव न देई लिव लागन,

आई, अत्यंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जमपिख है, कर ही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन

बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछे, सो करे जे मेरे चितना चितैनी, मन की मत त्यागो हरजन, एहा पात कठैनी, आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे ते वे बोलैनी।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवां चौक दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पावो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा फिर से हरख सोगत रह निरारा शेरी ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। पहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन

जो निंद करे इन ग्रहण की इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार।

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजया ज्यो बालू कर बार बिनसत बार ना लागई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए कार बार रहाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृट मान सा बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपत रहो मन बासना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुरते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रगाश प्रगट पया निसबासर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया मन तन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ भागा मैला कदे ना हो वई न लागे दागा। पर पाया सुखदाइया मिलया सुख पाए सहज सुमाना पीतरे छोड़या न जाए रघाओ। जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृता घानिया गुर अमर कराया। सो जाने जन चाखया हर नाम अमोला कीमत कई ना जाइए क्या कह मुख बोला। सबल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी पाव तूर तेरी दास की नानक कुरबाणी। बिलावल महला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोगे कृपा तारे सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम परादीस फूलते तो बख्शन हारे रघाओ। हम अवगुण करे असंख नीत तुम निर्गुण दाता रे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देव हो सब दया तार हम अकिरत कन्हारे लाग परे तेरे दान स्यों नए चित कसमारे। तोय त्योहार किश नहीं पव काटन हारे कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगध उधारे। बिलावल मुहला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइये जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइये। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा। नी तरिया तर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम

अंध कुब मैं गलत थे ताडे देहा थे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेटत होवत सुखी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाय पै बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ सराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सो प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मैं थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सद बल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दस पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभते पावो दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रखाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वार समय सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो ऊठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म।

रोग रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्याप साध संग मन तन हित फिर दुख ना जाप हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फेटिया ताके सुख परवेश।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रतेरिया प्रभु की वड्याई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रपगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दीसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सबे करे सजथान सोह, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवां, हर हर हर आराधिये होइए आरोग, रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग, रखाव गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलिया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक प्रसरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवां, दो पदे कर पंजवां, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, अवर उपास सत्या।

खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

ऊपर पावे, एकत सुनत सदा संहरे रहाओ। काज भयाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा, दिखिया मैं लबटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी, परम गुबार मुंह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा, गुर पीटे काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा, मन तरसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे।

सेमर सेमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख ना व्यापै, आगे दरगे पूर्ण काम रहाओ, आप त्याग परिये ने सरणी, गुरते पाएगे इहो निदान, जन्म मरण की कटिए फासी, ताची दरगे का निशान, जो तुम करो सोई फल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ताकी सरणाई, जा का किया सगल जहान। बिलावल मोहल्ला पंजवां। मान तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर वकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ, कोल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अंध सेती बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, और सागर पार पराही, संत सेव भगत हरता के, नानक मन लागा है ताही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामी, तुही वसे साध के संगा।

चरण गहे आमण जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहियो।

जो जो कीनो सो तुम जानो पेख्यो ठौर नाही कछ तीठ मुकरण बड़ प्रताप सुनो प्रभ तुमरो ओट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाव सदा सदा फूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं किरपाल किरपा निध जीवन पद नानक हर दसन बिलावल महला पंजवां।

पान जल मै राख्यो भेद नाहे ते पानी तैसे ही तुम ताए पछानो भगत हीन जो प्राणी कल में मुक्त नाम ते पावत गुर यह भेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावे। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कार दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट बसे देखी सब सोई गुरमुख विरला बूझे कोई वेण पै पै भगत न होई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ। ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कथ कद बाद करे दुख होई तद कहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई साची रहत साचा मन सोई मान वो कथनी है पर रहत न होई ना वो फूले थाओ न कोई मन माया बंध्यो सरजाल कड़ कड़ व्याप रहे हो बिख नाल जो अंज तो दिसे काल कार्य सीधो हृदय समाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई मन मखो में पत गवाई आपे करते भगत कराई गुरमुखे आपे दे वड़ियाई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कशोत वेद पुकारे भगत स्रोत सुन सुन मन वेख जोत शास्त्र सिमरत नाम गरड़ामंग गुरमुख सांत उत्तम करामंग मनमुख जोनी दुख सहामंग बंधन टूटे एक नाम वसामंग मन्ने नाम सची पद पूजा किस वेखा नाही को दूजा देख कहो पावे मन सोए नानक कह अवर नहीं कोय। बिलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे यो मन पुन पाप उचरे माया मन माते तृप्त न आवे तृप्त मुक्त मन साचा पावे तन तन कलत सब देह अवभाना बिन नावे किस संग न जाना रखाओ की तेरस पोक खुशियां मन केरी तन लोका तन पसमें टेरी खाकू खागर ले सब फैल बिन शब्दे नहीं उतरे मैल गीत राग तन ताल से कूरे त्रिगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुरमत दर्द ना जाए छूटे गुरमुख दारू गुण गाए होती उजल तिलक गलमाला अंतर क्रोध पड़े नाटशाला नाम सार माया मद पिया बिन गुर भगत नहीं सुगतिया तूकर स्वान गर्द मंजारा पशु मलेश नी चंडाला गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाईये बंधन बाध्या आईये जाइये गुर सेवा ते लहे पदार्थ हृदय नाम सदा किरतार्थ साची दरगे पूछ ना होए माने हुक्म सीजे दर सोए सदगुर मिले ता तिसको जाने रहे रजाई हुक्म पछाणे हुक्म पछाण सचे दरवास काल विकाल शब्द पै नास रहे अतीत जाने सब तिसका तान मन अर्पे है यो जिसका ना उ आवे ना उ जाए नानक साचे साच समाए। बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच गयान अंतर लोभ झूठ अभमान बिन नावे पाज लहे गनदान सतगुर सेव नाम से मन कीत गुर पेटे हर नाम चेतावे बिन नावे होर

गोविंद के सब इश पुजामी राम नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम रखे नेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम प्रापेहत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम नानक जल जले समाया जो

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

जन्म जन्म के किल विख गए, रम तराम जन्म मरण निवार, उच्च तराम पै पार उतार, सब ते ऊच राम परगा।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पगमल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत बुझ खेल कर जगत विहाय तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

मिटे हर नाए, दुख बिन से सो कीनो ठाओ, जप जप अमृत नाम अघाए, संत प्रसाद सगल फल पाए, राम जपत जन पार परे, जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ। गुर के चरण हृदय उरतारे, अग्न सागर ते उतरे पारे, जन्म मरण सा मिटी उपाध, प्रसून लागी सहज समाध, थान सनंतर एको स्वामी, सगल कठा का अंतर जामी, कर कृपा जाको मत दे, आठ पैर प्रभ का नाओ ले, जाके अंतर से प्रवे आप, ताके हृदय हुए परगास, भगत पाए घर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए।

नारायण रसना सिमरत पाप बलायन अरहाओ नारायण थम है निवास नारायण कड़कड़ परगास नारायण कहते नरक न जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन महे आधार नारायण भोयत संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पाने डायन नारायण।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास कही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे रखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है काम क्रोध लो मोह ना पोह है सा संग जपे निरंकार निंदक कै मोह लागे शार राम कवच दास का सुनाहो दो दुष्ट तिस पोहु तनाहे जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरण आए जो जो शरण पया हर राय

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

देव ना यो जति अभावे सेव ना यो योगी ना अवधूता ना समाय न काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत न को उपाई रहाओ ना यो गिरही ना उदासी ना यो राज न भीख मगासी ना इस पिंड न रग तू राती ना यो ब्राह्मण ना यो घाती ना यो तपा कहावे सेख ना यो जीवे न मरता देख इस मरते को जे को रोवे जो रोवे तो ही पद खोवे गुर प्रसाद में डगरो पाया जीव मरन दो मिटवाया कहो कबीर यो राम की अंश जस कागद पर।

अंत जो जुगतार उपजो ज्ञान हुआ परगास पर कृपा लीने कीटदास कौरवदास तप्त सेना चूकी जब मुकंद सेवा ताहू की गोंड जे ओ अड़सठ

खत्री ब्राह्मण सूद के वायस नृतन पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोय नानक शोभा रंगत होय। राम कली महला पहला तुदनु निवण मनन तेरा नाव साज पेट बैसन कौताव ससन तो होय अरदास ता सुन शब्द बखाले पास नानक बिरता कोई न होय ऐसी दरगे साचा सोई रखाओ प्राप्त पोता करम पसाओ तू देव मंगत जन चाओ पांडे पाओ पावे तते आए तुरत छोडी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरै गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तिकार कहे मंगत।

बूंद में सागर कवन बुझे बिद जाने, ओत खुश चलते आप कर चीने आपे तत् पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई।

प्रभावे आहिर भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रखाओ तुन वाजे अनखद कोरा मन माने हर समोरा और पूरे सच समाया और आद पुरख हर पाया अवनाद वेद गुरबाणी मन राता सारग पानी ते तीर्थ वर्त तब सारे गुर मिलिया हर निस्तारे ते आप गया पो पागा और चरणी सेवक लागा और सतगुर परम चुकाया हो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला शादन भोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी दुरमत पद खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज कर वस एक दृढ़ एको कर देखिया भीखिया पाए सब तृप्ता सह रखाओ पंच बैल गडिया दे तारी राम कला निभगे पसारी तर तूटी गाडो सिर पार लकरी बिखरजरी मंज पार पुरखा शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बेयोगी उत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज गोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंद्रा हर गुर सरना नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सदगुर प्रसाद राम कली महला तीजा कर पहला सजुग सच कहे सब कोई धर कर भगत गुरमुख होई तजुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझे को भी चार जो चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागे तो मुक्त होवे गुरबिन नाम न पावे कोई रखाओ त्रित एक करकी नी दूर पाखण वर्त्या हर जान नदूर गुरमुख बूझे सोजी होई अंतर नाम से सुख होई द्वापर दूजे दुबदा होए परम पुराने जाने दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रखाए एक पैर चले माया मोह वधाए माया मोह अत गुबार सगुर फेटे नाम उधार था जुग में साचा एको सोई था मैं सच दूजा नहीं कोई साची कीर्त सच सुख होई गुरमुख नाम खाने कोई था जुग में ना उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव तेरे संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर करताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सा सीगारी रखाओ, अखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते ओपत हुआ, पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद खावे, सभो निरारी पाखे, कर कर नृत होवे दिन राती, हर कड़वा जे तूरा, एक नचाव है, एक पवाव है, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

तन ते छुटकी अपनी तारी, प्रभ की आग्या लगी प्यारी। जो कुछ करे सो मन मेरा मीठा, ता यो अजद नयन डीठा। हम ओ जानी रे मेरी गई बलाए, मुर्गी निवारी ममता। गुर पूरे लियो समझाए रखाओ, कर कृपा राख्यो गुर सरना। गुर पकराए हर के चरना, बीस बिसवे जामन ठहराने। गुर पार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो किन्नु हम तिसके दास। प्रा मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई। गल मिल चाले एक पाई, जा को गुर हर।

जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप अरंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाद तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए।

पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोधत सोधत सोध बिचारा बिन घर भगत नहीं छुटकारा सोहर भजन साध कै संग मन तन रापे हर कै रंग तोड सियाणप बहुत चतराई मन बिर हर नावे जाए ना काई दया धारी गोविंद गुसाई हर घर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवा संत कै संग राम रंकेल आगे जमस्य होए ना मेल अंगबुद का पया विनाश दुर्मत होई सगली नास राम नाम गुण गा

संग पवजल तरी गए प्रभु के रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए

प्रगोष्ठ करत ते हरखना सोगना जन्म ना मरत कार कृपा आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास।

हर शरण मन तन हर ओई आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव, जाके किन्ने गए जीव। सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सु हेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पया, कोन दान इसनान ना संजम, सा संत बिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अपमान भया, जिसका इहो तान तान सो पर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंत काल के साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देव कुटाम्ब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरम कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पहला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिवलागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगनपुर लिट समय सार।

एक मैं सर्व सर्व मैं एका ए सर्व गुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा हो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया तिर पवन जो दिखाई सच्चे तख्त सच महली बैठे निरपो ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी काड़ काड़ किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सुखाई राम कली महला पहला औ हठ हस मड़ी करशाया तारण गगन कल तारी गुरम केती शब्द उधारी संतो रखाओ ममता मार ओ में सुख तिर पवन जो तुम्हारी मनसा मार मने मैं राखे सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाहद वाजे फड़कड़ जो तुम्हारी पर पांच बेण तई मन राखिया ब्रह्म अग्न परजारी पांच तत् मिल अहर्ष दीव निर्मल जो त्यपारी रस लौके इव तन किंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इव मन राजा पांच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कहे बपरे जीव तमुआ मन मारी ब्रह्मा बिशन महेश एक मूर्त आपे करता कारी ताया सो तरे पवसागर आत्म तत् विचारी गुर सेवा ते सदा सो पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता होमे तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वर्त एहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हृदय एक मोरारी मनवा अस्थिर शब्द राता एहा करणी सारी वेद बादरा पाखंड औदू गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जो कुमावे औदू जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे औदू जो जूत विचारी माया मोह भवज लख अवधु सब तरह कुलतारी सब सूरज उचारे अवधु बाणी भगत विचारी यो मन माया मोहया अवधु निरसे शब्द विचारी आपे बगसे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदिया एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा कन्नी पाए जोगी खिंसा कर तू दया आमन जान विपूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे हर सिमर लिवलाए रहाओ ससंतोख पद कर चोली जोगी अमृत ना पुगत पाई क्या कागर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई मान दृढ़ कर आसन बैल जोगी ता तेरी कल्पना जाई काया नगरी मैं मंगन चढ़े जोगी ता ना पल्ले पाई इत किंगरी ध्यान लागे जोगी ना सच पल्ले पाई इत किंगरी साधन आवे जोगी अवमान विचों जाई पाओ पाओ दोहे पत लाए जोगी यो शरीर का डंडी गुरमुख होवे ता तंती वाजे इन बेद तृष्णा खंडी हुकम बूझे तो जोगी कहिए एक स्यो चित लाए सहसा टूटे निर्मल होवे जो जुतिव पाए नदरी आमदा सब कुछ बिनसे हर से तीच लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता ए सो जी पाए यो जोग ना होवे जोगी जे कुटम छोड़ पर पवन करे गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्राप्त लह यो जगत मिट्टी का

रोग सोग परमीजा ताहू पवन तार जात बिहाय संत बिहावे कीर्तन गाय ताऊ बिहावे दिन रैन चाल ताऊ बिहावे सो पिड़माल ताऊ बिहावे बाल पढ़ावत संत बिहावे हर जगावत ताऊ बिहावे नट नाटक निरते ताऊ बिहावे जिया ए हिरते ताऊ बिहावे राज मैंडरते संत बिहावे हर्ज करते ताऊ बिहावे मता मसूरत ताऊ बिहावे सेवा जरूरत ताऊ बिहावे सोधत जीवत संत बिहावे हरस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड़ नहीं को स्याना कर कृपा जित दे वे नाओ नांग ताके बल बल जाओ राम कली महला पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट माद गर्भ संकट ते छूट जाका नाम सिमरत पो जाए तैसे संत जना राखे घर राय ऐसे राखन घर दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन बिसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंधले पेगत होए आनंद गूंगा भगत गावे बहुचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उदार जो पावक संग सीत को नाश ऐसे प्राशित संत संग विनाश जो साबन पापर उजल होत नाम जबत ता प्रम पखोत जो चक्री सूरज की आस जो चात्रक बूंद की प्यास जो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जनमाने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पहता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार तब थान देखे नैन अलोय सिबन दूजा अवर न कोय प्रम पे छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब समात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिये प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम पधार ना रहाओ खेन में ताप उतापे कुदरत तब करते के कारना ताम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिदारना नाम जत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवे प्राणी तिस ईहा उहा ना हारना सुख दूस मन की बिरदा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन की आप पालना अनकबार और जन ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेड़त पाव सब नस हरस्यो दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाय अंते हुए सुखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पद पुनीर किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई कारण कारण समरथ स्वामी नांग तिसरणाई बंधन तोड़ चरण कम दृढ़ाय एक शब्द लिवलाई अंध कू बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बने आई जन्म मरण का सिरसा चूका बहौड़ कतो ना ताई नाम रसायन इव मनाराता अमृत पी त्रिवताई संत संग मिल कीर्तन गाया नित लव से आ जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम धन पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियाण पुगतना मेरी पूरे गुरु कमाई जत स संजम सुच गए सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र मां बिखिया मैं गुर साते लाए तराई अपने जी ते आप संभाले आप लिगे लड़लाई साज तर्म का बेड़ा बंधया अवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजोनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरपो सब जलत रहा सुमाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाते माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा ताराम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सदगुर खेत निवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन ओलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया
ਹਰ ਕੀਮਤ ਪਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਚਰਨ ਕਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨਾ, ਸਾਚੇ ਦਰਸ ਸਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਕਥ ਆਵੇ ਕਥ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤੋ, ਆ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ, ਪੂਰਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤੋ, ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸੁਤ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤੋ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਬਲ ਕ੍ਰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ, ਭੂਮਨ ਕੇਰ ਮਹਤ ਬਿਗੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਰਗਾਓ ਅੰਤਰ ਸੂਖਾ ਬਾਹਰ ਸੂਖਾ, ਹਰ ਜਾ ਮਲਨ ਪਏ ਸੁਟਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਨੇ ਨਿਵਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਉਧਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਪਰ ਬਿਰਸੇ ਮਹਾਂ ਅੰਕਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਇਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰਿਆਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਰਵ ਦੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਵਾਮੀ।

जाए। सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, गुरु बाजो तत्ते सार न जानी। ती गुणी संसार परम सुत्ता, सुत्या रहन विखाणी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसया। बोले अमृत बाणी कहे नानक, सो तद पाए, जिसनु अनदिन हर लिव लागे। जागत रहन विखाणी, माता के उदर में प्रतिपाल करे। तो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये, ए वडदाता, जे अगन में आहार पहुंचावे। उसनु क्यों पुए न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे। अपनी लिवे आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिये। कहे नानक ए वडदाता, तो क्यों मनो वसारिये। जैसी अगन उदर में, तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही, करते खेल रचाया। जद पाणा ता जमया, परिवार पला पाया। लिव छुटकी लगी तिशना, माया अमर वरताया। ए माया जितर विसरे, मो उपजे पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। हर आप मुल्क है, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसे विटो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनु सिर सौंपिए, विचो आप जाए। जिदा जियो तिसमर रहे, हर वसे मन आए। हर आप मुल्क है, भगत ना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। हर रस मेरी मन वन जारा, हर रस मेरी मन वन जारा, सतगुर ते रस जानी। हर घर नित जप्यो जियो, ला खट्यो दिखाड़ी। इहो तन तिना मिलिया, जिन घर आपे पाणा। कहे नानका रस मेरी मन हुआ वन जारा। ए रसना तू अनस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए। होरत कित जिचर, हरस पल्ले न पाए, हरस पाए पल्ले पीए। हरस बहुड़ न तिसना लागे आए, इहो हरस करमी पाईए। सगुर मिले जिसे आए, कहे नानक होर अनस विसरे। जहां वस्ते मन आए, ए श्री रामे रिया। हर तुम जोत रखी, ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जू पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचया, जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सवीए, सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुपागे, अपना पिर जापे। अनहद बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर सुपोगो। कहे नानक प्रभ आ मिलिया, करण कारण जोगो। ए श्री रा मेरिया, ए जग में आए कै, क्या तु कर्म कमाया। ए कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जे हर तेरा रचन रचया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखया पाया। कहे नानक यो शरीर प्रवान होआ, जिन सगुर सिउ चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम में जो तरी। हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई। नदरी हर निहालिया, यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर ना कोई, कहे नानक ए नेत्र अंध से, सदगुर मिले देव दृष्ट होई। ए सबन हो मेरे हो, साचे सुनने नू पठाए, साचे सुनने नू पठाए। शरीर लाए तुनु सदबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ। रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो, साचे सुनने नू पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पौन मजाया। वजाया वाजा पौन नो दुवारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया। तय अनेक रूप नाओ नवनिध, सीधा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पौन मजाया। इव साचा सोयला, साचे कर गावो, गावो ता सोयला कर साचे। जिथे सदा सच त्याव है, सचो त्याव है, जां तु भाव है। गुरमुख जिना बुझाव है, यो सच सबना का खसम है। जिस बक्से तो जन पाव है, कहे नानक सच सोयला, सच्चे कर गाव है। अनद सुनो वडपागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रापाया, उतरे सगल बसूरे।
दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत, कहते पवित, सदगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनघा तूरे, राम कली सद, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, जगदाता सोए, भगत वत्सल त्यो लोए जियो, गुर शब्द समावे, अवर न जाने कोए जियो, अवरो न जाने शब्द गुर कह, एक नाम त्याव है, प्रसाद नानक गुरु अंगद, परम पद वी पाव है, हयाकारा चलन मारा, हर राम नाम समाया, जग अमर अटल, अतोल ठाकुर, भगते हर पाया, हर पाणा गुर पाया, गुर जावे हर प्रापा जियो, सतगुर करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो, पैज राखो हर जने केरी, हर दियो नाम निरंजनो, अंत चलदियां होए बेली, जम दूध काल निखंजनो, सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर तार कृपा सतगुर मिलाया, तन तन कहे साबास जियो, मेरे सिख सुनो पुत पाई हो, मेरे घर पाणा आओ मैं पा जियो, हर पाणा गुर पाया, मेरा हर प्रभ करे साबास जियो, भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रफाणा पावे, आनंद अनहद वजे वाजे, हर आप गल मेला आवे, तुसी पुत पाई परवार मेरा, मन वेखो कार निरजा जियो, तो लिखिया परवाना फिरे नाही, गुर जाए घर प्रापास जियो, सतगुर पाणे अपने, वह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोब सी, सो मैं मूल ना पाया, मित पैजे, मित विकसे, जिस मित की पैज पावे, तुसी विचार देखो पुत पाई, हर सतगुरु पै ना आवे, सतगुरु प्रतख होंदे, बैराज आप टकाया, सब सिख बंद पुत पाई, रामदास पैरी पाया, अंते सब गुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करहो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर घर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबाण हर अंगुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास छोड़ी तिलक दिया, गुर सद सज निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया,

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पंजवा हर हर त्याय मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुने चरना ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल है आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं जी जंत तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मान नहीं बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान।

राख लिगे भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एक नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन लगा मीठा पाना, तब इश कुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आ मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम, शांत प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्वजिया प्रतपाल जियो। श्लोक तदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पया वड पागी हो गृह प्रगटे प्रव आए जियो, गृह लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

खिन में मुए जा शब्द पछाने हस्तर चीत मरन मन माने गुर कृपा ते ना पछाने गगन गंभीर गगन अंतरवास गुण गावे सुख सहज निवास गया न आवे आए न जाए गुर प्रसाद रह लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समास गुनी हर नाम चेत फिर पवे ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहुनी कर दर फिरता की बो तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते माग पिता सो तिया केते गुर चिले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त न हुआ केती नारवार एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रवनार दैज टूंड करे मैं पाया मेल पया सदगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मय जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज अचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाए चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कम उतारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंत ही दिसे सब कोय चित एक तई सुख होय चित बसेरा ते हरन आए मुक्त पया पस्यो कर जाए छीजे दे खुले एक गंड छिया ने देखो जग हंड तूप शाप जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया शूची जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजे जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजे पई से बाल जापे आप प्रभु त्योलोय जुग जुग दाता अवर न कोय ज्यो पावे त्यों राखे राख जा जाचो देवे पदसाख जागत जाग रखा तू पावा जा तू मिले ता तुझे सुमावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिल गए बीस इक्कीस तक बोलन कह जय सुमवात तूर मरे देखे परमात जन्म हुए नी जीवन आसा आए चले पै आस नरासा चोर चोर चख माटी रल जाए काल ना चंप हर गुन गाए पाई नवनद हर कै नाए आपे देवे सहज सुपाए यानो बोले आपे बूझे आपे समझे आपे सूझे गुर का कहया अंक समावे निर्मल सूचे सचो पावे गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साच अखोट गुर कहया साकार कमावो गुर की करणी का हे तावो नानक गुरमत साज समावो टूटे नेहो के बोले सही टूटे बहा दूध गई टूट प्रीत गई बुर बोल दुर्मत परखर छी टोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी कर कार्य सार लहा साच न आवे तोटा तिर पवन ठाकुर प्रीत मोटा ठाको मनुआ राखो ठाए ठहक मुई अगुण पछताए ठाकुर एक सबाई नार बहुते बेस करे कूड़ियार पर कर जाती ठाक रखाई मैल बुलाई ठाक न पाई सब सुवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सभी फाटे तीर सीगार डापन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरब मुई कर आपने डीठी कंत सुजान डर आख्या गुर आपने निरपो नाम खान डूगर वाल तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा निवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह दे आखे सो कोई जय पावे तय दे गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोए टंडोलत टूणत हों फिरी टह टह पवन करार पारे टहते टह पै हौले निकसे पार अमर अजाती हर मिले तिनके हों बल जाओ तिनकी तूड़ अकुलिये संगत मेल मिलाओ मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवस तिस बलिहारे जाओ जो सारे सो टासी जिमन अवर न कोए गुर प्रसादी तिस समला ता तन दुख न होए अणा को मेरा किस गही अणा को हुआ न होग आमन जान में गुचिए दुदा व्यापे रोग ना विहुने आदमी कलर कंध गिरंत विण नावे क्यों छूटिए जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मत हीन है गुरबिन ज्ञान न होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग बिछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मान तरवर पंखी पंच तत चुगे मिल एक से तिनको फास नारंच उड़े ता बेगुल बेगुले ताके चोकणी पंख तुटे फाही पड़ी
ਆਗੁਣ ਪੀੜ ਬਣੀ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੀਏ ਹਰ ਗੁਣ ਕਰਮ ਮਣੀ ਆ ਛਿੜਾ ਏ ਛੂਟੀਏ ਵੱਡਾ ਆਪ ਧਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀਏ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆਂ ਜੇ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੇ ਜੀੜ ਥਾਨ ਬਿਹੂ ਨਾ ਹੋਏ ਥਾਨ ਮਾਨ ਸਚ ਏਕ ਹੈ ਕਾਜ ਨਾ ਫੀਟੇ ਕੋਏ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਰ ਨਰਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਸਰਵੇ ਥਾਨ ਸਨੰਤਰੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਏਕ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਥਾਨ ਸਨੰਤਰ ਰਵਰਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਸੀ ਵੱਡਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾ ਮੇਲ ਰਹੇ ਖਿਰ ਮੈਂ ਟਾਏ ਉਸਾਰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਤੁਹੀ ਦਾਨਾ ਕਹਿ ਸਿਰਦਾਨ ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਣ ਗੁਰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਨ ਗਏ ਬਹਿ ਚੂਰੀਏ ਤਨ ਮੈਂ ਚੀਤ ਗਵਾਰ ਤਨ ਵਿਰਲੀ ਸਚ ਸੰਚਿਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਤਨ ਗਿਆ ਤਾ ਜਾਣ ਦੇਹੇ ਜੇ ਰਾਚੇ ਰੰਗ ਏਕ ਮਨ ਦੀਜੇ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਪੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੰਦਾ ਤਾਪਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਸਾਜਨ ਪਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤੀ ਟੂਣਤੀ ਬਸਤਰ ਹੀ ਕਾਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਨਾ ਨਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਹੇ ਨਾ ਤਿਸ ਇਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅਗੁਣ ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੇ ਨਾ ਤਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਨਿਰਪੋ ਕਹਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਬ ਮਹਾਨ ਠਾਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਪੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸਾਜਨ ਛੇ ਰੰਗਲੇ ਕਿਸ ਪੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਜੇ ਕਰੀ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ਜਿਨ ਵਿਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲ ਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਅਪਾਰ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਪਾਵਲ ਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪ ਨਾ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਬੰਚੇ ਜਮਕਾਲ ਕਿਉਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰ ਚੂੜ ਬੁਰਾਖੇ ਕਾਲ ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵਿਹੜਿਆ ਪੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਹੇ ਵਿੜਨਾਵੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੀਏ ਪਾਪੇ ਪਜੇ ਪਚਾਹੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਫਾਹੀ ਫਾਸੇ ਕਊਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਅਬ ਕਿਆ ਹੂਆ ਫਾਥਾ ਚੋ ਜੁਗੇ ਨੀ ਬੂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਸੂਝੇ ਜੋ ਮਛਲੀ

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुण रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

कारण यो पेख निवासी किस वखर के तुम मन जारे क्यों कर साथ लंगावो पारे गुरमुख खोज पए उदासी दर्शन के ताई पेख निवासी साज वखर के हम मन जारे नानक गुरमुख उतरस पारे केत वेद पुरखा जन्म मटाया ताहे कौ तुझ यो मन लाया केत वेद आसा मन साखाई केत वेद ज्योत निरंतर।

कथियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गत मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जीया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण

एको होवे, जग करड़ा मन मुगावार, शब्द कमाइए खाइए सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सदगुर के पान, सच पै राता गर्भ निवार, एको जाता शब्द विचार, शब्द वसे सच अंतर ही, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बेख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हेवे करछाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जो जो काल संघार, बोले बाणी नानक बिचार, शब्द भागत सस जोत अपारा, सस कर सूर वस मिटे अंधियारा, सुख दो सम कर नाम अधारा, आपे पार उतारन हारा, गुर परचे मन सा समाए, प्रणत नानक काल न काए, नाम तत् सब ही सिर जापे, बिन नावे दुख कार संतापे, तत्तो तत् मिले मन माने, दूजा जाए इकत कर आने, बोले पवना गगन गरजे, नानक नेचल मिलन सहज, अंतर सुनंग बार सुनंग, तिर पमन सुन मसुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप ना पुनंग, काट काट सुन का जाने पेयो, आद पुरख निरंजन देयो, जो जान नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विधाता, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रते से कैसे, जिसते उपजे तिस ही जैसे, ओए जन्म ना मरे ना आवे जाहे, नानक गुरमुख मन समझाहे, नौ सर सुभर दसवें पूरे, ते अनहत सुन वजावे तूरे, साचे राचे देख हजूरे, कड़कड़ साज रहया पर पूरे, गुप्ती बाणी प्रकट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज पाई मिलिए सुख होवे, गुरमुख जागे नींद न सोवे, सुन शब्द अपरंपर तारे, कहते मुक्त शब्द निस्तारे, गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते, कबुद चवावे सोकत ठाए, क्यों तत न बूझे चोटा खाए, जमदर बादे कोए न रख, बिन शब्दे न ही पद सख, क्यों कर बूझे पावे पार, नानक मनमुख न बूझे गवार, कबुद मिटे

तैसोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तरसोई नजर करे शब्द घट में वस्त है विचो परम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाए शब्द गुरु पव सागर तरिए एत उते को जाने तेन वरन नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रय सत अंगलवाई औधु सुन सच आहारो गुरमुख बोले तत बिरोले तीन अलख अपारो त्रै गुण मेटे शब्द वसाए ता मन चूके अहंकारो अंतर बाहर एको जाने ता हर नाम लगे प्यारो सुखमना एड़ा पिंगला बूझे या आपे अलख लखाए नानक त्योते ऊपर सचा सतगुर शब्द समाए मन का जीव पवन कसियले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदु सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्दे रस न आवे औदु हौमे प्यास न जाई शब्दर ते अमृत रस पाया ताते रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्त्र रही है कित पूजन तृप्ता स है नानक दुख सुसम कर जाप सगुर ते काल ना ग्रस है रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्दे जल बल ताता बिंद ना राखया शब्द ना भाखया पवन ना साध्या सच ना आराध्या अकथ कथा।

सो अवधूती से पुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंतमय रेखना रूप मोहल्ला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्द उर्द करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड तिस उदासी का पड़े ना कंध बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंतमय रेखना रूप मोहल्ला पहला तो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले उपने बिंद न देई चरणा इस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंतमय रेखना रूप मोहल्ला पहला तो पैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मय रूपे थम आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सत समान बोले परतर सत स्वरूप परम तंतमय रेखना रूप मोहल्ला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीव है ज्योत कन पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे है आओ तूप शाम जे सम कर सह।

मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी। वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाव तदासा जापिए, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिए। रोग सोग दुख वंजे जिस नाहु मन वसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुरसबदी रस। खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया, तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवां, मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंभे भुली तो सज्जन की मैं कीम न पाउंदी, हां तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवां।

कारण करण करीम कुदरत तेरी है। सलोक महला पंजवा होए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाज पंदड़ी लाली पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली। महला पंजवा हठ मजाहू मैं माणक लद्दा मुल ना किदा मैं को सतगुर दिता टून मजाई थी या थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसके मस्तक कर्म होए तो सेवा लागा जिस गुरमल कमल परगासिया तो अनदिन जागा लगा रंग चरणार बिंद तब प्रम पौ पागा आत्म जीता गुरमति आगंजित पागा जिसे त्याया पार ब्रह्म तो कल मैं तागा साधु संगत निर्मला आठ सड़म जनागा जिस प्रम मिलया अपना तो पुरख सुभागा नांगत बलहारण है एवड़ पागा। सलोक महला पंजवा जा पिर अंदर ता तन बाहर जा पिर बाहर ता तन माहर बिन नावे बो फेर फिराहर सतगुर संग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर। महला पंजवा आहार सब करदा फिरे आहार एक ना होए नानक जित आहार जग उधर है विरला बूझे कोए पौड़ी वड्डियों वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक।

मुद्रा मदक सहतुन लागी सुगमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुसंजम रस गहने देओ रे तुरत प्याल सुधारस अमृत यो महारस पेओ रे निजर तार चोवे तन निर्मल ए रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछे एह महारस सचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन तारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा हौदू मेरा मन मतवारा उनमा चिड़ा मद रस चाखिया तेर पवन पया उजियारा अरहाओ दुइ पर जोर साई पाठी पियो महारस पारी ताम क्रोध किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गमत सदगुर ते सुध पाई दास कबीर तास बंद माता उचकना कब हो जाई तू मेरो मेर परबत स्वामी ओढ़ गही मैं तेरी।

कर भोजन हटे कर्म कर उदर परे चौदह अमावस रच रच मंग है कर दीप लय कूप परे तू ब्राह्मण में काशी कुजुलह मोहे तु बराबरी कैसे के बने हमरे राम नाम के उबरे वेद परोसे पांडे डूब मरे करवर एक अनंत डार साखा ओप पत्र रस पैया

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रहाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया तर

ले गगन मझारंग वेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सद कीनो सूर गेरास जाब कुंभक परपुर लीना ते बाजे अनहद बीना भगते बाक शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उत सपारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज द्योत स्वरूप